0: गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर. उठा उठा, सकाळ झाली आणि बॅक टू रुटीन लाईफ मध्ये जाण्याची वेळ आलेली आहे. तुम्ही ट्यून केलंय MGM 90.8 FM आणि एक्झॅक्टली 7:12 ही वेळ झालेली आहे. और आज के दिन का आगाज करना है इसी के साथ कुछ प्यारा सा विचार सुविचार अगर हमारे माइंड में यानी कि हमारे जबान पर आ जाए और आपको सुनने को मिले तो आज के दिन की शुरुआत हो ही जाती है अच्छे. यू नो व्हाट, अक्सर कुछ लोग ना ऐसा करते यार, काम तो है लेकिन करूँगा ना, और इस चक्कर में वो काम बस पेंडिंग पेंडिंग और पेंडिंग रहता है. वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज करे सो अब कर. ये क्यों कहते हैं पता है? बिकॉज पेंडिंग की वजह से अक्सर हम सोचते यार ये काम करना है कल कर लूँगा. नहीं नहीं, कल नहीं, आज करना चाहिए जनाब, क्योंकि कल का काम फिर और परसों में जाता है, परसों का एक और दिन डिले हो जाता है. इस वजह से कहते हैं कि कल करे सो आज करे सो अब कर. सो इन्हीं बातों को याद रखिएगा और आपकी मॉर्निंग बेहद खूबसूरत तरीके से गुड कीजिएगा. मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट लौटूंगा कुछ ही देर में. अभी तो शो का आगाज हुआ है. आज के शो मुझे खूब का एक गप्पा गोष्ठी मस्ती मजाक होना रहा है आणि एंटरटेनमेंट सोबत इन्फोटेनमेंट सुद्धा असेल. तर कुठे जाऊ नका, एन्जॉय करा येणारी सुबडोबर हिट मराठी गाणी ओनली ऑन MGM 90.8 FM. गुड मॉर्निंग.
1: Only on MGM 90.8 FM.

पैसों का कारवां विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक छोटा सा गांव था, वहां पर एक बुजुर्ग आदमी और उसका पोता एक गधे के साथ अपने सफर पर निकले थे। पहले दिन पोता गधे पर बैठा था और दादा चल रहे थे। रास्ते में कुछ लोग बोले, वाह बच्चा मजे कर रहा है और बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है। तो उन्होंने जगह बदल ली, अब दादा बैठा और पोता चलने लगा। थोड़ी दूर गए तो और लोग बोले, कितना खुदगर्ज बूढ़ा है ना, छोटा बच्चा पैदल चल रहा है। अब दोनों गधे पर बैठे लोग बोले, बेचारे जानवर पर कितना बोझ डाल दिया ना, इंसानों को तो शर्म नहीं आती है। फिर दोनों उतर गए और गधे को खुद ही चलने दिया। अब लोग हंसने लगे, इतने बेवकूफ है कि गधा होने के बावजूद भी पैदल चल रहे। सच तो ये है, कोई भी काम कर लो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। अगर आप लोगों की सोच के हिसाब से चलोगे तो ना खुद खुश रहोगे ना उन्हें खुश रख पाओगे। तो इसलिए जो सही लगे वही करो, क्योंकि याद रखिएगा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनको इग्नोर करना और बस आगे बढ़ते जाना। यही थी आज की कहानी का एक किस्सा। बताइएगा जरूर कैसा लगता है। डीएम ऑन इंस्टा आरजे अदनान एंड स्टे ट्यून्ड। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: अक्सर हमने एक लफ्ज़ के बारे में सुना होगा, सेल्फ लव। कैरा रील्स में हमने देखा है या मोटिवेशनल वीडियोस में देखा है सेल्फ लव, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है? तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ थे साइकेट्रिक्स डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर। हेलो सर, आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: कैसे हो सर आप?
1: आई एम गुड
0: सर। आपने किया है खुद से प्यार, सेल्फ लव?
1: हाँ बिल्कुल करता हूँ।
0: कब से?
1: उसके बारे में समझ आई तब से, और उसके वैल्यूज पता चले, देन आई स्टार्टेड लिविंग माय सेल्फ।
0: एग्जैक्टली, जब खुद की वैल्यू पता चलती है, उस चीज की वैल्यू पता चलती है, तो इंसान सेल्फ लव करता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे सर, क्योंकि सेल्फ लव ये बहुत सुना है, लेकिन सेल्फ लव और सेल्फिश होने में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है?
1: देखो, सेल्फ लव यानी क्या है ना, कि खुद की वैल्यू करना, ठीक है। जैसे हमें फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली हमें खुद को फिट रखने के लिए हम जिस तरह से उसके लिए हम अटेम्प्ट करते हैं या हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर से खुश रहना है, मुझे फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना है, वैल्यूज भी मुझे बरकरार रखने हैं और मुझे दूसरों का भी रिस्पेक्ट करना है, देन हम उसे कहते हैं कि हाँ ये सेल्फ लव है। अब सेल्फ लव में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आती है कि जिसमें कि क्या होता है, बहुत सारे लोग है ना आउट ऑफ द वे जाके खुद को, यानी ट्रबल अगर हो रहा है या परेशानी हो रही है तो भी दूसरों के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट इसमें क्या होता है ना कि उनमें उससे स्ट्रेस आ सकता है, उनमें फिजिकल एग्जर्शन आ सकता है, बर्नआउट हो सकता है, तो लोगों को उसके लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। तो हम लोग हमारे खुद के लिए, हमारे फैमिली के लिए हम कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तब उसे कहा जाता है कि सेल्फ लव। इक्वली बट हम लोग दूसरे के वैल्यूज भी रिस्पेक्ट करते हैं एंड दूसरों को भी उनकी इमोशनल और उनकी भावनाएं का भी हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर हम हमारे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मैं खुद के लिए कुछ चीजें करूंगा जो कि मेरे घर वाले या मेरे लिए बेनिफिशियल हो, या मेरे फिजिकली मुझे हार्म ना करे, इमोशनली हार्म ना करे, साइकोलॉजिकली हार्म ना करे, और मैं कुछ बाउंड्री सेट करूं, तो हम उसे कहते हैं कि सेल्फ लव है। सेल्फिश मीन्स क्या है ना, उसमें चीजें सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए ही करना, दूसरे के वैल्यूज का सम्मान नहीं करना। अगर उसे दिक्कत आ रही है मेरे से कुछ बात करने से, या मैं एक चीज इस तरह से डिसीजन दे रहा हूँ कि दूसरों को हार्म हो रहा है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसे तकलीफ हो रही है दूसरों को, पर मैं मेरे ही बारे में सोच रहा हूँ, देन हम उसे कहते हैं कि देन दिस इज सेल्फिश लव। बट सेल्फ लव में इट इज नॉट देयर। सेल्फ लव में यह है कि हम खुद के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करते हैं, हम हमारा खुद का ख्याल करते हैं, क्योंकि मैं जैसा, अगर मेरे कोई प्रिय व्यक्ति हो या मेरा कोई प्रिय फ्रेंड हो जिसके हम आदर सम्मान करते हैं, उसे रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह हम खुद का भी करना चाहिए, हमारे खुद के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सोच, तब उसे कहा जाता है कि दिस इज सेल्फ लव।
0: तो सेल्फ लव क्या होता है ये अभी हमने जाना, तो ये सारी बातें याद रखिएगा और खुद से प्यार करते रहिएगा। ऐसे टिप्स हम हर दिन जानेंगे अपने इस शो में, तब तक स्टे ट्यून्ड।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

गुड मॉर्निंग मेरे सुकून के साथियों, क्या हालचाल? एकदम मस्त बढ़िया। अभी तो आपकी नींद भी हो गई होगी और आपका दोस्त और होस्ट बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। So, वक्त हो चुका है आज की फरमाइश का। तो चलिए फिर आपकी फरमाइश पर कुछ बेहतरीन से गाने हम प्ले करेंगे। तो आज हमें फरमाइश आई है शैलेश काय की तरफ से इस गाने के लिए। क्या गाना यार, आजा सनम मधुर चांदनी में हम। लता मंगेशकर जी और मन्ना डे, इनकी आवाज में गाना भी हम एंजॉय करते हैं शैलेश जी की फरमाइश पर। तो दोस्तों, अगर आपकी भी फरमाइश हो तो बिंदास बेझिझक व्हाट्सएप कीजिएगा, शर्माइए मत यार, बिल्कुल बताइए और मुस्कुराते रहिए। और शैलेश जी का गाना भी हम प्ले करते हैं।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

लेट्स टॉक अबाउट सिटी अपडेट, सिटी में चल क्या रहा है। फिलहाल एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि देखो यार, गोवा प्लान हर किसी का होता है, मतलब दोस्तों का होता है, लेकिन आखिरी मोमेंट तक आते आते वो प्लान कैंसिल ही करना पड़ता है। तो अब आपको ना तो प्लान कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कुछ दोस्त ना प्लान इसीलिए कैंसिल करते हैं, भाई सफ़र बहुत लंबा है, तकरीबन 12-13 घंटे या 15 घंटे भी लग सकते हैं, मेरे को नहीं आना है। तो ऐसे जो बहाने बनाते हैं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबर है, क्योंकि अपने छत्रपति संभाजीनगर से गोवा के लिए पहले फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी। सो 1 अक्टूबर से छत्रपति संभाजीनगर टू गोवा के लिए फ्लाइट अवेलेबल होने वाली है। सो आप बाय एयर गोवा जा सकते हो और अपना प्लान फिक्स कर सकते हो। दोस्तों के साथ जो गोवा प्लान कैंसिल होते थे, इस बार तो कंप्लीट कीजिएगा। और वीक में 3 दिन ये फ्लाइट रहेगी, 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। गोवा से निकलेगी 2:05 में और छत्रपति संभाजीनगर में पहुंचेगी 5:00 और अपने शहर से निकलेगी 5:20 पर और वहां पर पहुंचेगी 7:15। तो कुछ इस तरीके से इसका पूरा टाइम टेबल रहने वाला है। तो इस बार तो अपने दोस्तों के साथ गोवा प्लान फिक्स कीजिएगा और वो गोवा वाला अधूरा सपना मुकम्मल कीजिएगा। सो अपडेट में, सो सिटी अपडेट में फिलहाल ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि 1 अक्टूबर से गोवा के लिए शहर से फ्लाइट शुरू होने वाली है। स्टे ट्यून्ड।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: सांगायची गरज नाहीये. तर हे ऍक्सिडेंट कंट्रोलमध्ये यावेत आणि ऍक्सिडेंट झाल्यावर अपघातग्रस्तांना लवकरात लवकर मदत पोहोचावी यासाठी AIची मदत आता घेणार आहेत. म्हणजे कसं आहे, ITC यानी की इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, ये एक सिस्टीम वहां पर अटैच करेगी. और ये सिस्टम क्या करेगी, अगर कोई गाड़ी ना कुछ सस्पिशियस सिचुएशन में हमें नजर आ रही है या आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और लग रहा है कि अब एक्सीडेंट होने ही वाला है, तो वो AI से अटैच रहेगा और वो पूरी उसकी सस्पिशियस एक्टिविटी कैप्चर करेगा और वो फिर मैसेज सीधे कंट्रोल रूम पर जाएगा और पता चलेगा कि कुछ पल के बाद इस गाड़ी का एक्सीडेंट होने ही वाला है. बाकी पूरी प्रोसेस शुरू होगी और इसके जरिए ना, तो अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो अपने आप पता चलेगा कंट्रोल रूम में और वहां से एम्बुलेंस भी निकल जाएगी मदद करने के लिए. तो जहां पर एम्बुलेंस को पहले पहुंचने के लिए 45 मिनट के ऊपर टाइम लगता था, तो अब बस 10 मिनट का टाइम इसे लगने वाला है. फिलहाल 400 किलोमीटर के अंदर ही इसकी टेस्टिंग शुरू है. अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो पूरे समृद्ध हाईवे पर आपको ऐसे ITS कैमरे नजर आएगी, यानी कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इसे कहते हैं AI का सही यूज करना और एक्सीडेंट रोकने की कोशिश करना. होप सो ये सब कुछ सक्सेसफुल हो जाए ताकि इस सिस्टम के जरिए तो भी एक्सीडेंट होने पर वक्त पर एम्बुलेंस पहुंचे. सो स्टे ट्यून्ड.
1: Only on MGM 90.8.

0: टूथपेस्ट हो या साबुन हो या तो फिर शैम्पू हो, खरीदते वक्त ना तो आपको एक डॉट देखना बहुत जरूरी है। वैसे आपने इन सब चीजों के ऊपर रेड डॉट या ग्रीन डॉट देखते हो क्या? वैसे सही मायने में किसी पर होता है और किसी पर नहीं भी होता ये डॉट, लेकिन अब ऐसा करना कंपलसरी है। बात कुछ ऐसी है कि 29 सितंबर से इसको लेकर नए रूल्स लागू होने वाले हैं। टूथपेस्ट हो, साबुन हो, शैम्पू, कॉस्मेटिक और टॉयलेटरीज जैसे प्रोडक्ट के पैकेट पर ग्रीन या रेड आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया जाएगा। अब तक ना तो किसी किसी पैकेट पर होता था, किसी पैकेट पर नहीं होता था, बस किसी पर लिखा होता था न्यूट्रिशनिस्ट, नॉट न्यूट्रिशनिस्ट, ऐसे कुछ होते थे। लेकिन अब ये लिखना कंपलसरी है। ग्रीन मार्क का मतलब है ये प्रोडक्ट वेजिटेरियन है और रेड मार्क का मतलब होता है ये प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन है। ग्रीन वाला वेज तरीके से बनाया हुआ है और रेड वाला नॉन वेज तरीके से बनाया हुआ है, सिंपल तरीके से आप ये समझेगा। क्योंकि अब तक ना तो प्रोडक्ट पर हर्बल, नेचुरल या ऑर्गेनिक लिखा होता था तो उससे वेजिटेरियन समझ में नहीं आता था कि ये वेज है या नॉन वेज है, इसीलिए ये नए रूल्स और रेगुलेशन लागू होने वाले है। नेक्स्ट टाइम जब आप ना साबुन, शैम्पू या टूथपेस्ट लेने जाओ तो पैकेट पर जरूर चेक कीजिएगा कि ग्रीन है या रेड मार्क है, फिर ही खरीदेगा जो आपको खरीदना है उस हिसाब से। सो ये छोटा सा डॉट है लेकिन प्रोडक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। स्टे अपडेट एंड स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड

वैसे आजकल चोरी करने वालों के ना टैंट्रम्स ही बहुत बढ़ गए हैं भाई, वो देखते हैं प्रोडक्ट कौन सा चोरी करना है और कौन सा नहीं। तो बात कुछ ऐसी है कि एक केस ऐसा सामने आया था जहाँ पर आईफोन 18 की चोरी हो गई। एक मोहतरमा रास्ते से जा रही थी और चोर उनके पास आए और पहले उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, मैम आपका फोन तो बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे आईफोन कौन सा है वो? तो मैडम ने कहा कि अरे अभी तो मैंने आईफोन लिया 3 दिन पहले, आईफोन 18 है। फिर क्या, वो बंदे को यानी कि चोर को इन्फॉर्मेशन मिल गई और उन्होंने फिर वो आईफोन लेकर भाग गए। मतलब पहले उन्होंने कन्फर्म किया कि आईफोन 18 है या फिर 13-14 है, क्योंकि 13-14 तो अब मार्केट से बाहर ही हो चुके। तो अब वही ना कि चोर ना चोरी करने से पहले कंफर्म कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट मैं चोरी कर रहा हूँ वो फायदे का है या नहीं है। और वैसे भी जब कोई नया आईफोन लेता है ना तो कोई भी पूछे रास्ते से जाते हुए, और मैडम और भाई नया फोन दिख रहा है कौन सा है, तो इंसान बहुत ऐसे चौड़े में कहता है अरे भाई आईफोन 18 खरीदा है, आईफोन 17 खरीदा है, और प्राइस भी बता देता है। क्या पता सामने वाला पूछने वाला सच में पूछ रहा है या तो फिर चोरी के अंदाजे से पूछ रहा है। तो बस भाई उन्होंने भी कहा थैंक यू मोहतरमा जी इस इन्फॉर्मेशन के लिए और फटाक से मोबाइल लेकर भाग गए। तो दोस्तों नया फोन खरीदने की खुशी बिल्कुल मनाओ, लेकिन पब्लिक प्लेस में थोड़ा अलर्ट भी रहो, वरना कब कोई आपकी तारीफ करने के चक्कर में आपकी बर्बादी कर दे पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल फोन नया हो या पुराना, चोरों के लिए बस फोन वैल्यूएबल होना चाहिए। तो बी सेफ बी केयरफुल। बट वो एक होता है ना कि यार मैंने आईफोन 18 खरीदा, हाथ में लेकर घूमते मस्त दिखावा करते है, कब कौन छीन कर ले जाए पता नहीं। बाकी हवाबाजी कम कीजिएगा एंड सुनते रहिएगा ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: इंडिया वर्सेज जापान की मैच तो इंडिया ने 2 रन से जीत ही ली है, बट यहाँ पर मैच से ज्यादा चर्चाएं जापानीज प्लेयर्स की हो रही है। भाई मैच तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, फिर 5-5 ओवर का मैच हुआ और इंडिया जैसे वर्ल्ड चैंपियन के सामने जापान को चेस के लिए 33 रन मिले थे। जापान जीत तो नहीं पाया, लेकिन इंडिया को लिटरली लास्ट बॉल तक टेंशन में रखा था। और मैच के बाद जो हुआ ना, वो सच में बहुत स्पेशल चीज थी। जापानीज प्लेयर ने इंडियन प्लेयर्स के साथ जर्सी एक्सचेंज की, फोटोज लिया और इंडियन स्टार से ऑटोग्राफ भी लिया। और सबसे खास बात ये हुई कि जिस तरीके से वो जापानी कल्चर में थैंक यू कहते ना, ऐसा पूरा झुककर, वैसे जापानीज प्लेयर ने इंडियन प्लेयर्स को थैंक यू कहा। यहाँ तक कि जो ऑडियंस आई थी ना मैच देखने के लिए, उन्होंने भी ऐसा झुककर थैंक यू कहा, और वो एक मोमेंट था जो सबसे प्यारा था इस मैच में। और यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी ना तो जापान की इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को यार नए होमीज तो मिल ही गए। बात तो सही है यार, जापान के सामने इंडिया ने पहली बार मैच खेला, और भले ही जापान क्रिकेट इतना नहीं खेलता हो, लेकिन जितना भी खेलता है बहुत अच्छा ही खेलता है। तो रिजल्ट इंडिया के नाम रहा, लेकिन जापान ने एक मैसेज जरूर दे दिया कि क्रिकेट सिर्फ बड़े क्रिकेटिंग नेशंस का गेम नहीं है, जापान जैसे कंट्रीज भी इस गेम को सीरियसली अपना रही है। पूरे मैच में आपका कौन सा प्यारा सा मोमेंट था जो आपको बहुत पसंद आया, बताइए जरा। डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, और बाकी तो सुनते रहिए।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: सेना तो इसका शूटिंग स्टार्ट हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। राजकुमार हिरानी और अभिजीत जोशी ने तो इसकी स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है और ये तिगड़ी हमें फिर से तकरीबन 20 साल के बाद बड़े पर्दे पर एक साथ दिखेगी। और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इसका सीक्वल बन सकेगा, लेकिन कहानी अब आगे बढ़ने वाली है तो हमें तो बाद में पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस बार 3 इडियट में क्या कुछ बवाल मचने वाला है। फिलहाल यादव के सफर को थोड़ा और ताजा करते और सुनते हैं जरा 3 इडियट का आइकॉनिक गाना ऑल इज वेल एंड हमेशा मुस्कुराते रहना मेरे यानी के आरजे अदनान के साथ।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: दोस्तों, एक जमाना था जब हिंदुस्तान सिर्फ अपने गानों के लिए नहीं, अपने जूतों के लिए भी बहुत मशहूर था। मैं बात कर रहा हूँ 1955 के एक आइकॉनिक गाने की।
2: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
1: ये गाना ना सिर्फ एक फिल्म का हिट गाना नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया था। राज कपूर साहब के इस गाने ने रशिया में ऐसा धमाका किया कि लोग उन्हें श्री 420 इस नाम से बुलाते थे। और एक बार तो मॉस्को के एक मेले में ऐसा हुआ, रशियन आंटी यही गाना गुनगुना रही थी, वो भी हिंदी में, और राज कपूर साहब वहाँ पहुंचे तो और लोगों ने तो लिटरली उनके जैसे ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया था। इमेजिन करो, एक फॉरेन कंट्री में लोग लाल टोपी और जापानी जूता पहनकर घूम रहे हैं सिर्फ राज कपूर साहब के लिए। और असली बात तो क्या थी पता है क्या? जो जूता ना राज कपूर साहब ने फिल्म के अंदर पहना था, वो एक्चुअली इंडियन लोकल मार्केट से लिया गया था, बस नाम जापान का दिया था। इसे कहते हैं असली मार्केटिंग लेवल ऑफ बॉलीवुड। तो चलिए फिर आप यही गाना एंजॉय करते हैं। गानों के किस्सों में मेरा जूता है जापानी गाने के बारे में हमने एक किस्सा जाना।
0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: महात्मा गांधींचे विचार तुमच्या अभिनयातून मांडण्याची सुवर्ण संधी। MGM विद्यापीठाच्या संगीत व नाट्यशास्त्र विभागाच्या वतीने आयोजित महात्मा गांधींच्या विचारधारेवर आधारित पथनाट्य स्पर्धा। महाविद्यालयीन, शालेय व कोणत्याही संस्थेचे संघ सहभागी होऊ शकतात। संघात 6 ते 15 कलाकार असावे। सादरीकरणाचा कालावधी 10 ते 15 मिनिटे। मोफत प्रवेश आणि हजारो रुपयांची रोख पारितोषिके जिंकण्याची संधी। स्पर्धा दिनांक 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी MGM विद्यापीठामध्ये। संपर्क 9881214898 आणि 9075023520।

किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: एक टाइम था यार जब ना तो हम कहते थे अरे जेंसी ये तो बस रील्स बनाते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, दो मिनट से ज्यादा इनसे फोकस होता ही नहीं है। लेकिन जब किसी बात पर ये जनरेशन सीरियस हो जाती है तब सबको समझ आता है कि स्क्रीन के पीछे सिर्फ फिल्टर नहीं ओपिनियन भी होते हैं। और ये सिर्फ जेंजी ही नहीं मिलेनियल्स भी काम करते हैं ऐसे ही। एक जनरेशन ने इंटरनेट बनते हुए देखा और दूसरे ने इंटरनेट को अपनी आवाज बनाई, और वो आवाज किस तरीके से है आज हम सभी लोग देख रहे हैं। वैसे ऑफिस में भी ऐसे होता है जेंजी और मिलेनियल्स का। जेंजी सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस की बात नहीं करता बल्कि पूछते भी है कि ये प्रोसेस ऐसे ही क्यों है, इसको बेटर कैसे बना सकते हैं, अगर बॉस कुछ हद से ज्यादा ही परेशान कर रहा है या सैलरी लेट आ रही है या अपने काम से ज्यादा काम दिया जा रहा है तो मिलेनियर्स क्या करते हैं या 90s किड्स, उनको आदत हो गई है ना, चलो बॉस ने कहा है ना हम कंप्लीट कर देते हैं, आगे काम आ सकता है बॉस अपने लिए। लेकिन जेंजी ऐसा नहीं करते, जेंजी डायरेक्टली कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते। इस वजह से जेंजी पसंद है भाई अपने को। देखो दोनों भी अपने अपने जगह पर सही है, मिलेनियर्स को और 90s किड्स को उस चीजों की आदत हुई है प्रेशर झेलने की, जेंजी वैसे नहीं है। तो अगली बार किसी जनरेशन को सिर्फ मेम्स या स्टेरियोटाइप से जज मत करना, क्योंकि जनरेशन की ताकत उसकी एज में नहीं उसके सोचने, सवाल पूछने और सही वक्त पर सही स्टैंड लेने में होती है, और सवाल पूछने की आदत जेंजी में बहुत है, नोटिस कीजिएगा ये चीज। एंड बाकी तो स्टे ट्यून्ड
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। MGM विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी यांचे संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात येत आहे अखिल भारतीय गांधी साहित्य संमेलन निबंध स्पर्धा। इयत्ता 7वी ते 10वी आणि कनिष्ठ महाविद्यालयापासून पदव्युत्तर पदवीपर्यंतचे सर्व विद्यार्थी यात सहभागी होऊ शकता। विजेत्यांना मिळणार 10,000, 8,000 आणि 7,000 पर्यंतची रोख पारितोषिके। स्पर्धेचे विषय 21व्या शतकातील गांधीवादी अहिंसेचे महत्व, जागतिक शांतता आणि गांधीजींचे विचार, गांधीजींची शाश्वत जीवनशैली, गांधीजींचे पर्यावरण विषयक विचार, गांधीजींची हिंद स्वराज्य संकल्पना, ग्राम स्वराज्य ते स्मार्ट विलेज, ग्रामीण स्वावलंबनाची सद्यस्थिती आणि आव्हाने, सत्याग्रह आधुनिक लोकशाही चळवळीचे प्रभावी साधन, स्त्री सक्षमीकरण आणि गांधीजींचे विचार, महात्मा गांधीजींचे शैक्षणिक विचार, आजची पत्रकारिता आणि गांधीजी, जागतिक गाव, दृष्टिकोन आणि आचरण, लोकशाही तत्व आणि आचरण, बहुलतावाद, सर्वसमावेशकता आणि राष्ट्रवाद। निबंध पाठविण्यासाठी ईमेल ID essaycompetition@mgsindia.net। अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2026। अधिक माहितीसाठी व्हिजिट करा www.mgmu.ac.in और www.mgsindia.net।

गावू मोठे वर्त गाने गावू मोठे वर्त बाण तल मजला जा तल रे पर जा बिगी बिगी बिगी बिगी डौलान डौलाने गावू मोठे

चालली माया तो माजा काकू वाद नहीं कोई कोई अनपाता पानी दुधवानी फुलवित जाते जाई दुई धरती माता यही नाता ने तू नहीं रोले नर लेने गाव मोटे वर्त गाने गाव मोटे

ਕੱਟੜੀ ਵਾਂਗੀ ਵੱਲ ਪਾਪੜੀ ਮੱਤਿਆ ਕੱਢੋ ਨਿਭੇ

0: kanda,
1: green tea kanda,
0: ani watana green tea,
1: hita sauda,

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए खास बात खुदा।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM। दोस्तों एक जमाना था जब हिंदुस्तान सिर्फ अपने गानों के लिए नहीं अपने जूतों के लिए भी बहुत मशहूर था। मैं बात कर रहा हूँ 1955 के एक आइकॉनिक गाने की।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
0: ये गाना ना सिर्फ एक फिल्म का हिट गाना नहीं था बल्कि एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया था। राज कपूर साहब के इस गाने ने रशिया में ऐसा धमाका किया कि लोग उन्हें श्री 420 इस नाम से बुलाते थे। और एक बार तो मॉस्को के एक मेले में ऐसा हुआ, रशियन आंटी यही गाना गुनगुना रही थी, वो भी हिंदी में, और राज कपूर साहब वहाँ पहुंचे तो और लोगों ने तो लिटरली उनके जैसे ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया था। इमेजिन करो एक फॉरेन कंट्री में लोग लाल टोपी और जापानी जूता पहनकर घूम रहे हैं सिर्फ राज कपूर साहब के लिए। और असली बात तो क्या थी पता है क्या? जो जूता ना राज कपूर साहब ने फिल्म के अंदर पहना था वो एक्चुअली इंडियन लोकल मार्केट से लिया गया था, बस नाम जापान का दिया था। इसे कहते हैं असली मार्केटिंग लेवल ऑफ बॉलीवुड। तो चलिए फिर आप यही गाना एंजॉय करते हैं। गानों के किस्सों में मेरा जूता है जापानी गाने के बारे में हमने एक किस्सा जाना।
2: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

लेट्स टॉक अबाउट सिटी अपडेट, सिटी में चल क्या रहा है। फिलहाल एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि देखो यार, गोवा प्लान हर किसी का होता है, मतलब दोस्तों का होता है, लेकिन आखिरी मोमेंट तक आते आते वो प्लान कैंसिल ही करना पड़ता है। तो अब आपको ना तो प्लान कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कुछ दोस्त ना प्लान इसीलिए कैंसिल करते हैं, भाई सफ़र बहुत लंबा है, तकरीबन 12-13 घंटे या 15 घंटे भी लग सकते हैं, मेरे को नहीं आना है। तो ऐसे जो बहाने बनाते हैं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबर है, क्योंकि अपने छत्रपति संभाजीनगर से गोवा के लिए पहले फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी। सो 1 अक्टूबर से छत्रपति संभाजीनगर टू गोवा के लिए फ्लाइट अवेलेबल होने वाली है। सो आप बाय एयर गोवा जा सकते हो और अपना प्लान फिक्स कर सकते हो। दोस्तों के साथ जो गोवा प्लान कैंसिल होते थे, इस बार तो कंप्लीट कीजिएगा। और वीक में 3 दिन ये फ्लाइट रहेगी, 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। गोवा से निकलेगी 2:05 में और छत्रपति संभाजीनगर में पहुंचेगी 5:00 और अपने शहर से निकलेगी 5:20 पर और वहां पर पहुंचेगी 7:15। तो कुछ इस तरीके से इसका पूरा टाइम टेबल रहने वाला है। तो इस बार तो अपने दोस्तों के साथ गोवा प्लान फिक्स कीजिएगा और वो गोवा वाला अधूरा सपना मुकम्मल कीजिएगा। सो अपडेट में, सो सिटी अपडेट में फिलहाल ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि 1 अक्टूबर से गोवा के लिए शहर से फ्लाइट शुरू होने वाली है। स्टे ट्यून्ड।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: अच्छा एक बात बताओ, याद है आपको वो हॉस्टल का कमरा, ऑल इज वेल का वो मैजिक मंत्र, और याद है वो तीन पागल बेफिक्रे दिलदार दोस्त जिन्होंने हमें सिखाया था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सफलता आपके पीछे आ जाएगी। वो जो लफ्ज है वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, आप समझिएगा। तो मैं बात जो आपको बताऊंगा उसे सुनकर आपके चेहरे की स्माइल 32 की जगह 36 इंच की होने ही वाली है। तो दिल थाम के बैठिएगा बॉस, क्योंकि हमारे प्यारे रैंचो फरहान और राजू यानी आमिर खान, आर माधोना और शर्मन जोशी फिर से एक साथ एक ही फ्रेम में हमें नजर आने वाले हैं धमाल मचाते हुए। जी हाँ, सच्ची कह रहा हूँ, 3 Idiots का सीक्वल अब आने वाला है और अप्रैल मंथ से ना तो इसका शूटिंग स्टार्ट हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। राजकुमार हिरानी और अभिजीत जोशी ने तो इसकी स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है और ये तिगड़ी में फिर से तकरीबन 20 साल के बाद बड़े पर्दे पर एक साथ दिखेगी। और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इसका सीक्वल बन सकेगा, लेकिन कहानी अब आगे बढ़ने वाली है तो हमें तो बाद में ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस बार 3 Idiots में क्या कुछ बवाल मचने वाला है। फिलहाल यादव के सफर को थोड़ा और ताजा करते और सुनते हैं जरा 3 Idiots का वो आइकॉनिक गाना ऑल इज वेल एंड हमेशा मुस्कुराते रहना, मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ।
1: Only on MGM 90.8 FM. स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
0: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

AI ना तो हमें हर एक फील्ड में नजर आता है, हर एक जगह में नजर आता है। तो बात कुछ ऐसी है कि अब कभी आपने सोचा था क्या कि AI की वजह से एक्सीडेंट रोके जा सकते हैं? तो बात यही सच होने जा रही है। समृद्धि महामार्ग आपले सर्वांना माहित, यानी याच्यावर किती ऍक्सिडेंट होतात हे वेगळं सांगायची गरज नाही आहे, तर हे ऍक्सिडेंट कंट्रोलमध्ये यावेत आणि ऍक्सिडेंट झाल्यावर अपघातग्रस्तांना लवकरात लवकर मदत पोहोचावी यासाठी AIची मदत आता घेणार आहेत। म्हणजे कसं आहे, ITC यानी की इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, ही एक सिस्टीम वहां पर अटॅच करेगी। और ही सिस्टीम क्या करेगी, अगर कोई गाड़ी ना कुछ सस्पिशियस सिचुएशन में हमें नजर आ रही है या आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और लग रहा है कि अब एक्सीडेंट होने ही वाला है, तो वो AI से अटैच रहेगा और वो पूरी उसकी सस्पिशियस एक्टिविटी कैप्चर करेगा और वो फिर मैसेज सीधे कंट्रोल रूम पर जाएगा और पता चलेगा कि कुछ पल के बाद इस गाड़ी का एक्सीडेंट होने ही वाला है, बाकी पूरी प्रोसेस शुरू होगी। और इसके जरिए ना, तो अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो अपने आप पता चलेगा कंट्रोल रूम में और वहां से एम्बुलेंस भी निकल जाएगी मदद करने के लिए। तो जहां पर एम्बुलेंस को पहले पहुंचने के लिए 45 मिनट के ऊपर टाइम लगता था, तो अब बस 10 मिनट का टाइम इसे लगने वाला है। फिलहाल 400 किलोमीटर के अंदर ही इसकी टेस्टिंग शुरू है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो पूरे समृद्धि हाईवे पर आपको ऐसे ITS कैमरे नजर आएगी, यानी कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसे कहते हैं AI का सही यूज करना और एक्सीडेंट रोकने की कोशिश करना। होप सो ये सब कुछ सक्सेसफुल हो जाए ताकि इस सिस्टम के जरिए तो भी एक्सीडेंट होने पर वक्त पर एम्बुलेंस पहुंचे। सो स्टे ट्यून। Only on MGM 90.8 FM.

0: एक टाइम था यार जब ना तो हम कहते थे अरे ये जेंसी ये तो बस रील्स बनाते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, दो मिनट से ज्यादा इनसे फोकस होता ही नहीं है। लेकिन जब किसी बात पर ये जनरेशन सीरियस हो जाती है तब सबको समझ आता है कि स्क्रीन के पीछे सिर्फ फिल्टर नहीं ओपिनियन भी होते हैं। और ये सिर्फ जेंजी ही नहीं मिलेनियल्स भी काम करते हैं ऐसे ही। एक जनरेशन ने इंटरनेट बनते हुए देखा और दूसरे ने इंटरनेट को अपनी आवाज बनाई, और वो आवाज किस तरीके से है आज हम सभी लोग देख रहे हैं। वैसे ऑफिस में भी ऐसे होता है जेंजी और मिलेनियल्स का। जेंजी सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस की बात नहीं करता बल्कि पूछते भी है कि ये प्रोसेस ऐसे ही क्यों है, इसको बेटर कैसे बना सकते हैं, अगर बॉस कुछ हद से ज्यादा ही परेशान कर रहा है या सैलरी लेट आ रही है या अपने काम से ज्यादा काम दिया जा रहा है तो मिलेनियर्स क्या करते हैं या 90s किड्स, उनको आदत हो गई है ना, चलो बॉस ने कहा है ना हम कंप्लीट कर देते हैं, आगे काम आ सकता है बॉस अपने लिए। लेकिन जेंजी ऐसा नहीं करते है, जेंजी डायरेक्टली कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते। इस वजह से जेंजी पसंद है भाई अपने को। देखो दोनों भी अपने अपने जगह पर सही है, मिलेनियर्स को और 90s किड्स को उस चीजों की आदत हुई है प्रेशर झेलने की, जेंजी वैसे नहीं है। तो अगली बार किसी जनरेशन को सिर्फ मेम्स या स्टेरियोटाइप से जज मत करना, क्योंकि जनरेशन की ताकत उसकी एज में नहीं उसके सोचने, सवाल पूछने और सही वक्त पर सही स्टैंड लेने में होती है, और सवाल पूछने की आदत जेंजी में बहुत है, नोटिस कीजिएगा ये चीज। एंड बाकी तो स्टे ट्यून्ड
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: वैसे आजकल चोरी करने वालों के ना टैंट्रम्स ही बहुत बढ़ गए हैं भाई, वो देखते हैं प्रोडक्ट कौन सा चोरी करना है और कौन सा नहीं। तो बात कुछ ऐसी है कि एक केस ऐसा सामने आया था जहाँ पर आईफोन 18 की चोरी हो गई। एक मोहतरमा रास्ते से जा रही थी और चोर उनके पास आए और पहले उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, मैम आपका फोन तो बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे आईफोन कौन सा है वो? तो मैडम ने कहा कि अरे अभी तो मैंने आईफोन लिया 3 दिन पहले, आईफोन 18 है। फिर क्या, वो बंदे को यानी कि चोर को इन्फॉर्मेशन मिल गई और उन्होंने फिर वो आईफोन लेकर भाग गए। मतलब पहले उन्होंने कन्फर्म किया कि आईफोन 18 है या फिर 13-14 है, क्योंकि 13-14 तो अब मार्केट से बाहर ही हो चुके। तो अब वही ना कि चोर ना चोरी करने से पहले कन्फर्म कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट मैं चोरी कर रहा हूँ वो फायदे का है या नहीं है। और वैसे भी जब कोई नया आईफोन लेता है ना तो कोई भी पूछे रास्ते से जाते हुए, और मैडम और भाई नया फोन दिख रहा है कौन सा है, तो इंसान बहुत ऐसे चौड़े में कहता है अरे भाई आईफोन 18 खरीदा है, आईफोन 17 खरीदा है, और प्राइस भी बता देता है। क्या पता सामने वाला पूछने वाला सच में पूछ रहा है या तो फिर चोरी के अंदाजे से पूछ रहा है। तो बस भाई उन्होंने भी कहा थैंक यू मोहतरमा जी इस इन्फॉर्मेशन के लिए और फटाक से मोबाइल लेकर भाग गए। तो दोस्तों नया फोन खरीदने की खुशी बिल्कुल मनाओ, लेकिन पब्लिक प्लेस में थोड़ा अलर्ट भी रहो, वरना कब कोई आपकी तारीफ करने के चक्कर में आपकी बर्बादी कर दे पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल फोन नया हो या पुराना, चोरों के लिए बस फोन वैल्यूएबल होना चाहिए। तो बी सेफ बी केयरफुल। बट वो एक होता है ना कि यार मैंने आईफोन 18 खरीदा, हाथ में लेकर घूमते मस्त दिखावा करते है, कब कौन छीन कर ले जाए पता नहीं। बाकी हवाबाजी कम कीजिएगा एंड सुनते रहिएगा।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।